0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுஃபலாம் மலய ஜ சீதலாம்.

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की पहली तिथि, तदनुसार दिनांक 23 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सादर वंदे, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बुलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड

0: ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय आज के चिंतन का।
2: वर्तमान में भारतीय व अन्य जीवन पद्धति में आकार और निराकार के विषय निरंतर चर्चा में रहे हैं। आकार और निराकार का दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत नहीं होकर वरन पूरक है। जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर आकार है, सॉफ्टवेयर निराकार है। शरीर आकार है और जो विचार व्यक्त हो रहे हैं, जिनका कोई रूप रंग वजन नहीं है, न ही जिनको हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, ये विचार मानव विकास के और विनाश के क्रांति बीज है। इनके बिना मनुष्य पशुपत है। संपूर्ण अस्तित्व आकारगत है, जो हमें साकार रूप से दिखाई देता है, जिसमें अनंत रहस्य वैज्ञानिक नियम छिपे हुए हैं और उन वैज्ञानिक नियमों से आज हम सब संचालित हो रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका वजूद है और इसके वजूद से ही आज पूरी विज्ञान टिका हुआ है। हमारी दृष्टि में साकार स्वरूप को इस तरह से देखने की होनी चाहिए कि जिसमें छिपे हुए निराकार को हम देख सके, समझ सके और इस निराकार स्वरूप को आकार में सृजित कर सके। इस निराकार स्वरूप की समझ से बेहतर दुनिया में परिवर्तन कर सबका कल्याण करते हुए मानव जाति के हित में लगा सके। मानव चेतना के विकास के लिए ये आध्यात्मिक दृष्टि है और यही वैज्ञानिक सोच की प्रक्रिया है। आकार और निराकार को पूरक समझ लेने पर समाज में सौहार्द पनपने लगेगा। युवा वर्गों से अपील है कि विज्ञान के अस्तित्वगत शिक्षा में वैज्ञानिक नियमों को समझकर विकसित करने का प्रयास करें, ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक आविष्कार कर देश की उन्नति को अग्रसर कर सके।
1: आकार और निराकार विषय पर आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं, आप सुने भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

लता मंगेशकर के स्वर में आपने अभी भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये अगली भक्ति रचना।

स्वामी आप सुन रहे थे देशगान। इसके साथ ही भक्ति संगीत का यह दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। कलाकार हैं सुलोचना नागर और साथी।

7:20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे रितेश जैन से वार्ता। वार्ता का विषय है रेडियो का जादू आज भी बरकरार।

सवेरे 8:15 पर प्रसारित होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस।

प्रातः 9:15 पर आप सुन सकते हैं कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम। 9:30 पर प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10:00। शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:00।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती में बात कार्यक्रम हमारा वाला सब भाइयों ने बोलने सुराती के लिए तबेनो राम राम राम राम। बहन बहनों, खेती बाड़ी में मक्का सोयाबीन कपास दलहनी फसल कर ली है। अभी अपने खेती बाड़ी में खरपतवार नहीं काड़वानु काम है करी सक। आना समय में अपने खेतर में जाए भी जगह है कि खूब कीचड़ दलदल ने हो तो अपने खरपतवार काड़वानु काम ही करी सक। क्या जरूरी अपने फसल छोटी हो अगर आसपास खरपतवार थी जाते समय पर नहीं काड़ो ये अपने फसल नु है पोषण लई लाने की अपने जो फसल है अच्छी वृद्धि ने था। एटले अगर आप पौधो तीस दड़ावधि थी गयो हो तो आसपास ने जो खरपतवार है ये अपने लेंदी नहीं काढ़ी नाखी जो है जहां तक कोशिश करी जो है कि अपने हाथ थी खरपतवार है काढ़ी नाखवा ने अगर समय पर अपने नहीं काढ़ा तो खूब बड़ी थी जागा तो इनकी अपने फसल भी प्रभावित थाएगा ने इन बाद अपने रासायनिक दवाइयों उपयोग भी करवो पड़ेगा खरपतवार ने नष्ट करवा बदले। एटले छोटी हो तो सब काढ़ी नाखा ठीक रहे जब पौधो अच्छो बड़ो थी जा इन बाद तो अपने आप ही खरपतवार वधार पनप्पा नहीं देगा। हो कार्य अपने अवड़े कर लेव कृषि में बीजो अपने अवड़े आ समय में खेती हाथे हाथे पशुपालन भी कार्य कर रहा हूँ खेती ने पशुपालन में एक बीजा पूरक व्यवसाय है हाथे हाथे साले ने इन थी बे में फायदो है क्योंकि खेती थी की से उत्पाद प्राप्त थाय ये अपने पशु चारा रूप में उपयोग कर सको जेम के अपने सोयाबीन घास है मक्का नहीं है या फिर जे अपना अनाज था खली वगैरह ने अपने पशु चारा रूप में उपयोग कर लो एम भी अपने दीगा कवड़ी है मक्का अपने पेरी है मक्का ने जे घास रहे पशु बोले खूब पौष्टिक रहे दूधरो पशु बोले तो खूब अच्छी रहे इन प्रकार जो पशु है इनकी अपने गौमूत्र है गोबर है प्राप्त था इनकी की अपने अच्छो सो देशी खाद है बनाई सको ने इनकी की ये खातर अपने खेतर में मिलवा थी की अपने फसल भी अच्छी थाएगा जैविक खाद में उपयोग करूंगा फसल अच्छी थाएगा साथ साथ ही फसल गुणवत्ता भी अच्छी रहेगा अपने स्वास्थ्य बल्ले भी अच्छा रहेगा। वर्तमान में समय में बदा रासायनिक पदार्थ या रासायनिक खातर नो उपयोग कर रहा हूँ इनकी की फसल मात्रा में बढ़ोतरी थी रही है परंतु कहने की अपना स्वास्थ्य प्रभावित थी रहो ने इनकी की घनी बीमारियां थी रही है तो आने से ऊपर अपने विशेष ध्यान देव पड़ेगा ने अवड़े है अपने जैविक खेती करवाना खूब जरूरी है क्योंकि अपने अगर जैविक पदार्थ नो उपयोग करूंगा या फिर देशी खातर नो प्रयोग करूंगा तो अपने फसल अच्छी थागा हाथे हाथे अपने स्वास्थ्य भी इनकी की सुधार थागा ने हो भी फसल अपने खावा थी की बीमारी यही कम थागा पहले से बदा जेम रसायनों को प्रयोग नहीं होता तेरी जो फसल थी इनो उपयोग करवा थी कि लोगों ने स्वास्थ्य अच्छो रहता दिखी रहा कि जेम दवाइयों में प्रयोग वधार थई रहो है जेटली अपने विज्ञान तरक्की करी है नवी नवी चीज नो आविष्कार करो है रासायनिक पदार्थ बनाया है इनो नुकसान ही अपने स्वास्थ्य ऊपर पड़ी रहो एटले होने चीज थी कि दूर रहो अपने खेती बाड़ी करो तेन में पूर्ण रूप से ध्यान रखो एमने अपने खरपतवार भी थी हो तेने कोशिश करिए कि हाथ थी या मशीन द्वारा अपने खरपतवार ने उखाड़ी लो या नष्ट कर दो क्योंकि जब खूब मात्रा में खरपतवार बढ़ेगा तो रासायनिक दवाई नो प्रयोग करो पड़ेगा एटले जे खेती बाड़ी में अपने आ काम अपने विशेष रूप से कर देव है एने बाद अपने पशुधन राखो एना भी विशेष ध्यान रखू है एना अलावा जे पशु ने बांधवानो वाड़ो है एने साफ सफाई नु उचित ध्यान रखू है एन हाथे हाथे जे पशु ने अपने चारो या वाटो मिली रहो एनी साफ सफाई नु भी ध्यान रखू है अच्छी तरह थी देखी लेव है की चारो मिलाओ या पलारी ने जे वाटो मिलाओ एने कोई जीव जंतु नहीं पड़ेलो हो कई नो क्लेसेस नहीं हो बीजो वाला में कोई जीव जंतु ना हो ये भी ध्यान रखू है हाथे हाथे इन्होंने बांधवानी जगह है सूखी हो वधार गीली नहीं हो एने साफ सफाई नु ध्यान रखू है सोरा ऊपर अपने बातें तो घनी करी बातें हजी भी करी थी पर आज सोरा नो समय पूरा थी गयो शास्त्रीय तबिन्या ज्ञानो राम राम राम राम।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती में बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना जैविक खेती एवं पशुओं की देखभाल के विषय में सामान्य जानकारी।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे सुलोचना नागर और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुलोचना और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharti.com।

0: archives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: सुगम संगीत आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे रितेश जैन से वार्ता। वार्ता का विषय है रेडियो का जादू आज भी बरकरार।
2: रेडियो का जादू आज भी बरकरार। रेडियो, जिसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, का अपना एक अनोखा आकर्षण रहा है। यह बिना किसी आडंबर के हमारे दैनिक जीवन में सहज रूप से घुल मिल जाता है। पिछली करीब एक सदी की शानदार यात्रा में रेडियो भारत के जन जन के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नई संचार तकनीकी अभ्युदय से बहुत पहले रेडियो ही वह भरोसेमंद आवाज थी जो दूर दराज के इलाकों, विविध भाषाओं और अनगिनत जिंदगियों को एक अदृश्य धागे में पिरोता था। सामूहिक श्रवण के माध्यम से यह लोगों को न केवल जोड़ता था बल्कि उन्हें एक साझा अनुभव का हिस्सा भी बनाता था। 14-15 अगस्त 1947 की वह रात कोई कैसे भूल सकता है, जब रेडियो तरंगों पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा गूंज उठी थी। आज से करीब 120 साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। भारत में आवाज की इस अनोखी दुनिया को 103 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सन 1923 में रेडियो क्लब मुंबई ने भारत में रेडियो का पहला प्रसारण शुरू किया। इसके बाद भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। कंपनी ने भारत सरकार से रेडियो प्रसारण का अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर 23 जुलाई सन 1927 को मुंबई से रेडियो प्रसारण प्रारंभ कर दिया। सन 1936 में दिल्ली में रेडियो के केंद्रीय स्टेशन की स्थापना हुई। तब इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, जिसे संक्षिप्त में AIR कहा जाता है। और आजादी के बाद सन 1957 में आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती का रेडियो विभाग है और स्थापना से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका भाव है जनता के कल्याण और सुख के लिए, आदर्श वाक्य के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहा है। आकाशवाणी की स्थापना के शताब्दी वर्ष से मात्र एक दशक दूर 90 वर्षों के सफर में देश भर में फैले 591 प्रसारण केंद्रों के माध्यम से, जो भारत के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 99.19% जनसंख्या को आच्छादित करने वाला प्रसारण तंत्र है। स्थलीय प्रसारण के जरिए यह 23 भाषाओं और 182 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। रेडियो का प्रसारण भारत की व्यापक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विविधता का सजीव प्रतिबिंब है। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकाशवाणी महानगरों के साथ साथ दूरदराज, ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच बनाती है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सभी आयु वर्ग

सभी जाति वर्ग और सभी के लिए उपयोगी, मनोरंजक और उत्साहवर्धक होते हैं। समाचार, समसामयिक विषय, कृषि परामर्श, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य जागरूकता, युवा कार्यक्रम, शास्त्रीय और लोक संगीत और विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। आपात स्थितियों व प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी आकाशवाणी ने समयबद्ध चेतावनियां और प्रमाणित जानकारी उपलब्ध कराकर अपनी विश्वसनीयता और जन सेवा की प्रतिबद्धता को निरंतर सिद्ध किया है। आकाशवाणी के 90 वर्षीय सफर में 36 वर्षीय युवावस्था लांग कर प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का माही चैनल बांसवाड़ा की चर्चा करना प्रासंगिक है। सन 1991 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण उपमंत्री भारत सरकार के कर कमलों से उद्घाटित यह केंद्र न केवल बागड़ क्षेत्र अपितु सीमावर्ती गुजरात और मालवा तक अपनी पहुंच रखता है और अब डिजिटल युग में तो यह विश्वव्यापी हो गया है। यहां की लोक धुन, ढोल, थाली, कुंडी, घुंघरू और शहनाई की मधुर आवाज जिसमें वागड़ की मिट्टी की सौगंध है, ऐसी प्यारी धुन से प्रारंभ होने वाला कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके पात्रों में ही भांजी भाई, प्रेमजी भाई, डूंगर भाई, कमला बुआ सौत्रे पर बैठकर स्थानीय बोली में खेती, पशुपालन, स्वास्थ्य और जीवनोपयोगी बातें कर जन जन तक पहुंच बनाई। कार्यक्रम युववाणी, जिसने नवसृजित युवाओं को कलम हाथ में देकर उनकी आवाज को तराशा। महिला जगत और रविवार को प्रसारित बच्चों के मुख से कार्यक्रमों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। और खास बात, आकाशवाणी की टीम गांव गांव जाकर वहां के विशेष अवसरों, कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करती और जब केंद्र से प्रसारण होता तो देहात में रहने वाला वह बच्चा, युवा, बुजुर्ग, माता, बहनें अपनी आवाज सुनकर हर्षोल्लसित और रोमांचित हो उठते। आकाशवाणी केंद्र बांसवाड़ा ने छुपे हुए गुजड़ी के लालों को मंच एवं माइक प्रदान कर विशेष पहचान प्रदान की है। इसलिए इस अवसर पर कहने को मन करता है, धन्यवाद और आभार आकाशवाणी बांसवाड़ा। डिजिटल व सोशल मीडिया के प्रभुत्व वाले इस युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से सीधे संवाद के प्राथमिक माध्यम के रूप में रेडियो का चयन, इसकी स्थायी प्रासंगिकता और उससे जुड़े भरोसे को रेखांकित करता है। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ मन की बात ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जो कई भाषाओं और क्षेत्रों में उपलब्ध है। शताधिक प्रसारित एपिसोड इस बात का उदाहरण है कि कैसे डिजिटल युग में भी रेडियो जनसंचार का एक प्रभावी साधन बना हुआ है। पहुंच, निरंतरता, सुलभता और सस्ती तकनीक के कारण रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का लोकप्रिय जनसंचार माध्यम बना हुआ है। रेडियो सर्वसुलभ और सस्ता जनसंचार माध्यम है, साक्षर और निरक्षर सभी के लिए उपयोगी है, दृष्टिहीनों के लिए तो वरदान है। रेडियो के लिए भौगोलिक सीमाएं कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों और गांवों में जहां जनसंचार के अन्य माध्यमों की पहुंच नहीं है, वहां के लिए रेडियो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। कम्युनिटी रेडियो ने भी इसकी प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। संचार क्रांति के मौजूदा दौर में भी सदाबहार गीतों की तरह रेडियो ढाणी ढाणी, गांव गांव, शहर शहर सूचना

0: शिक्षा और मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत रितेश जैन से वार्ता। वार्ता का विषय था रेडियो का जादू आज भी बरकरार। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 7:30 हुए हैं और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

0: जिंदगी से दोस्ती करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, और जब जीवन मुस्कुराने लगे तो अक्सर किसी अपने की याद भी साथ चली आती है। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: क्या कर रहा हूँ?
1: दुनिया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: दुनिया ठीक है।
2: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
2: आओ ना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। श्रोताओं, आपके लिए विशेष सूचना, कृपया सुन लें, जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में हम जोली फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीले धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अप्रैल फूल फिल्म के गाने के साथ। हसरत जयपुरी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: नहीं महके तो भवरा वही जाए, दिल का तो पिया तेरे ही पास आए।
1: मेरा दिल है वो पागल पंछी

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
4: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
2: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और

0: केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों के जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना

0: शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफलमैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कुछ दिल से। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का शुभेच्छा।

प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक, आकाशवाणी, जन जन की वाणी, जहां शब्दों में सत्य का प्रकाश हो, जहां स्वर में संवेदना का वास हो, वही प्रसारण राष्ट्र की पहचान बनता है, हर दिल की धड़कन और हर मन की आवाज बनता है। जी हां श्रोताओं, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रसारण के गौरवशाली इतिहास की स्मृति का प्रतीक है। वर्ष 1927 में इसी दिन मुंबई से देश के पहले संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की आवाज को जन जन तक पहुंचाने की ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ था। श्रोताओं, आपका और हमारा रिश्ता आवाज की मखमली डोर से बंधा है, तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज का यह विशेष प्रसारण समर्पित है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को, उस ऐतिहासिक क्षण के सम्मान में जिसने देश को संवाद की ऐसी धरोहर दी जिसकी गूंज आज भी करोड़ों दिलों तक सुनाई देती है।

0: विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, रेडियो का जादू आज भी बरकरार है। पिछली करीब एक सदी की शानदार यात्रा में रेडियो भारत के जन जन के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सामूहिक श्रवण के माध्यम से ये न केवल लोगों को जोड़ता है बल्कि उन्हें एक साझा अनुभव का हिस्सा भी बनाता है। 14-15 अगस्त सन 1947 की वह रात कोई कैसे भूल सकता है, जब रेडियो तरंगों पर भारत की स्वतंत्रता की उद्घोषणा गूंज उठी थी। सन 1923 में रेडियो क्लब मुंबई ने भारत में रेडियो का पहला प्रसारण शुरू किया। इसके बाद 23 जुलाई सन 1927 को मुंबई से रेडियो प्रसारण प्रारंभ कर दिया। सन 1936 में दिल्ली में रेडियो के केंद्रीय स्टेशन की स्थापना हुई, तब इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, जिसे संक्षेप में AIR कहा जाता है। और आजादी के बाद सन 1957 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। श्रोताओं, रेडियो कहने से हमें हमारी परंपरा का बोध होता है, रेडियो में हमारी जड़ें मौजूद है। श्रोताओं, हम उस दौर की बात करते हैं जब संचार के साधनों में मात्र रेडियो था। शुद्धता, स्पष्टता एवं समयबद्धता का दूसरा नाम ही रेडियो है। प्रसारण की शुरुआती दौर से लेकर आज तक रेडियो ने लंबा सफर तय किया है। ये केवल रेडियो की शुरुआत नहीं थी बल्कि भारत के संवाद, संस्कृति और सामूहिक चेतना की नई यात्रा का आरंभ था।

श्रोताओं, भारत का राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती का रेडियो विभाग है और स्थापना से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करता हुआ अनवरत राष्ट्र की सेवा कर रहा है। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकाशवाणी महानगरों के साथ साथ दूर दराज ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच बनाता है। श्रोताओं, स्वरों की यह यात्रा राष्ट्र की धड़कन बन गई। कहते हैं शब्दों में संसार बदलने की शक्ति होती है। जब यही शब्द संवेदना का स्पर्श पाकर स्वर बनते हैं तो वे सीमाओं को लांघ जाते हैं। वे किसी गांव की चौपाल से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक, किसानों की आशाओं से लेकर विद्यार्थियों के सपनों तक, सैनिक के साहस से लेकर मां की प्रार्थना तक हर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। आवाजें सरहदों और समंदर के आर पार छनती रही।

श्रोताओं, आकाशवाणी की 90 वर्षीय सफर में 36 वर्षीय युवा अवस्था लांघकर प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल की चर्चा करना प्रासंगिक है। सन 1991 में तत्कालीन प्रसारण व उपमंत्री भारत सरकार के कर कमलों से उद्घाटित हमारा यह केंद्र न केवल वागड़ क्षेत्र अपितु सीमावर्ती गुजरात और मालवा तक अपनी पहुंच रखता है और अब डिजिटल युग में तो यह विश्वव्यापी हो गया है। यहां की लोकधुन जिसमें वागड़ की मिट्टी की सोंधी महक है, ऐसी मनमोहक धुन से आरंभ होने वाला कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके पात्रों में भांजी भाई, प्रेमजी भाई, डुंगर भाई और कमला भुआ, स्थानीय वागड़ी बोली में खेती, पशुपालन, स्वास्थ्य व जीवनोपयोगी बातें कर स्थानीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम युववाणी जिसने नवसृजित युवाओं को कलम हाथ में देकर उनकी आवाज को तराशा, महिला जगत, नारी लोक एवं रविवार को प्रसारित बच्चों के मुख से कार्यक्रमों ने अपनी विशेष पहचान बनाई। और श्रोताओं, खास बात यह है कि आकाशवाणी की टीम गांव गांव जाकर वहां के विशेष अवसरों, कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करती और जब केंद्र से प्रसारण होता तो देहात में रहने वाला वह बच्चा, युवा, बुजुर्ग, माता और बहनें अपनी आवाज सुनकर रोमांचित हो उठते। आकाशवाणी केंद्र बांसवाड़ा में छुपे हुए गुदड़ी के लालों को मंच एवं माइक प्रदान कर विशेष पहचान दिलाई है। इसीलिए इस अवसर पर बतौर उद्घोषिका ये कहने को मन करता है, धन्यवाद और आभार आकाशवाणी बांसवाड़ा, जिसने लोक कलाकारों, लोक गीतों और भूले बिसरे गीतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

श्रोताओं, 23 जुलाई केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, भारतीय प्रसारण की स्वर्णिम यात्रा का प्रथम अध्याय है। आकाशवाणी ने केवल घटनाओं का प्रसारण नहीं किया, उसने समय का इतिहास संजोया है। रेडियो ने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की यात्रा में शिक्षा, कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य, साहित्य, संगीत और लोक जीवन को जन जन तक पहुंचाया। संकट के समय विश्वास दिया, उत्सव के समय उल्लास बांटा और हर परिस्थिति में जन सेवा को अपना धर्म माना। समय बदला, तकनीक बदली, प्रसारण की आत्मा नहीं बदली, लेकिन उद्देश्य वही रहा, विश्वसनीय सूचना, सार्थक शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन। श्रोताओं, एक उद्घोषक की आवाज केवल शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं होती, बल्कि श्रोताओं के प्रति उत्तरदायित्व का परिचय होती है और श्रोताओं ने रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्वनि दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। प्रसारण की सबसे बड़ी शक्ति है दूर बैठे अनगिनत हमारे श्रोताओं को एक अदृश्य रिश्ते में बांध देना, तो मन का रेडियो बजने देना।

श्रोताओं, आज हम इन सभी उद्घोषकों, समाचार वाचकों, कार्यक्रम निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, लेखकों, संगीतकारों और पर्दे के पीछे कार्य करने वाले अनगिनत कर्मयोगियों को नमन करते हैं, जिनकी मेहनत से लाखों श्रोता ज्ञान, सूचना और प्रेरणा से जुड़ते हैं। आवाजें बदल सकती हैं, माध्यम नए हो सकते हैं, लेकिन जन सेवा का संकल्प और विश्वास की धड़कन कभी नहीं बदलती। इसी के साथ मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेणुका माथुर और साथी कलाकारों के गाए इस लोकगीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

कश्मीर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और

0: समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, साथ ही ईमानदारी से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 3 महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान महिला सशक्तिकरण का जन आंदोलन बन चुका है। श्री शर्मा कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से संवाद करते हुए उनके विचार भी जाने। प्रदेश में जनवरी 2025 के बाद 1,56,000 से ज्यादा नए जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही गिव अप अभियान के तहत करीब 93 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 4,46,00,000 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूरी हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। श्री गोदारा ने बताया कि ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है जो गिव अप अभियान के कारण संभव हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे गंभीर एनीमिया की स्थिति को माइल्ड एनीमिया में बदला जा सकेगा और गर्भवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए चलाए गए 5 दिन के अभियान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों में अधिकतर एनीमिया से संबंधित है। श्रीमती राठौड़ ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में कम प्रगति वाले करौली

0: फलौदी, कोटपुतली बहरोड, जोधपुर, बालोतरा, खैरथल तिजारा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और डीग जिले के सीएमएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। प्रदेश के सहकारी भंडारों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी महाप्रबंधकों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। शासन सचिव ने कल जयपुर में सहकारी भंडारों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी करते हुए उन्होंने बताया कि अजमेर भंडार विभिन्न मापदंडों में पहले स्थान पर रहा है, वहीं बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गई। ये दिन भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रसारण ने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद इसने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक रूप से साकार करते हुए जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारा, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी तो बारा जिले में अति भारी बरसात हुई। बांसवाड़ा में 7 इंच पानी बरसा। ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में तेज बरसात हुई। पाली में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश बरसने से झरने बहने लगे हैं। जालौर और जयपुर में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ में मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के कई स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। जोधपुर में भी तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बाड़मेर के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज पानी बरसा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: तीसरे पहर मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराईं और बरसात का दौर शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। शिव इलाके में तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच किसानों में खुशी की लहर है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह बोडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का और कई अन्य जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार आज बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और अति भारी बरसात की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।
3: मौसम के जाने मौसमों के जाने।
2: सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुन रहे हैं चंदन दास की आवाज में

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: चंदन दास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं। एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग, व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड।

0: adopted. Because the term environment, environmental protection, ecological conservation, these are terms nahi the usme. But other school of thought, on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean ki कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का. लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21 जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके एनवायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं. और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजंस की होती है वो 51AG में मेंशन है. और तो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन में उनके मैंशन होता है. इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड an important, it always had given importance to environmental preservation. So if you can see 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation, Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hai. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के अंडर काम करते हैं, EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के अंडर से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basic Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights or fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments. But usme Supreme Court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles, ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi river se ya tree se nahi shuru ho raha hai, forest se nahi shuru ho raha hai, wo ek drain se shuru ho raha hai. Because this was the case of Municipal Council Ratlam versus Varthi Chand ka case, jisme there was an open sewage situation, sanitary issues the ek chote se town mein Madhya Pradesh ke, wahan pe citizens went to court and they asked the magistrate to intervene because statutory manner mein CRPC jo pehle hua karta tha, which is now BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहां पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजंस हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slipped into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.

0: एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर, तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड. तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई. उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है. बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया. तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट. तो पहला एस्पेक्ट तो ये था. दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी. कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया. तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई. थर्ड वॉज सुओमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने. नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओमोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओमोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया. चौथी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए. बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजेंट रिस्पॉन्सेज. अदर देन दिस मॉनिटरी कंपनसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो. तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इम्प्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देर वर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसने आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज अ राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, वट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशन इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी. सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्व्ड. So, for example, I have given the example of two cases, Ganga pollution case as and the oleum gas leak case. So, just to take one example, in the M.C. Mehta versus Union of India case, M.C. Mehta went to court and it said that ye tanneries se jo pani, jo chemical factories or tanneries se jo waste nikal ke pani mein ja raha hai, which is polluting the Ganga river. Eventually, the court had to order to shut down these tanneries. So, this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, isme court ne pehli baar एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को. एंड द टीएन गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज्ड प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक

0: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
0: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
0: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
0: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
0: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
0: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
0: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
0: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
0: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
0: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
0: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
0: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800-4400-559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं।

0: भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसलकर गिर गया।
1: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए।

0: बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णु दत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
6: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
7: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
8: आज मैं राजा बनूंगी।
9: आज मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं राजा बनूंगा।
11: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
8: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
12: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
8: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
12: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
13: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
8: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
12: महाराज की जय हो। जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता

0: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोद कर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए। हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
1: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
2: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
0: चोरी।
1: राजा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
0: ये सच है, मैंने एक बार अपने कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
2: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
1: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
0: झूठ।
1: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
2: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
0: चोट? वो
1: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
2: ठहरू, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
1: राजा को क्रोध आ गया,
0: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
1: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
5: आ गया। क्या खूब रंग

0: जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी अमृत वाला आ गया। अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
1: अरे मशकू भाई
2: जी जनाब,
1: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
2: लीजिए जनाब।
1: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो
2: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
1: रखो रखो।
2: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
1: गर्मी में पानी पिलाया तुमने।
2: रखो, शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: अमृत वाला आ गया।
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मशक पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नज़र एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
1: मशकूब भाई
2: जी जनाब,
1: प्यास बहुत लग रही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
2: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह भी खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
1: लो। बस बस,
2: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
1: सही कहा मशकूक भाई,
2: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
1: अभी तक तो कुछ नहीं।
2: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहे इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
1: अरे नहीं नहीं,
2: नहीं, नहीं, आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
1: भाई
2: जी,
1: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
2: क्या बात करते हैं,
1: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
2: इसमें नेकी की क्या बात है?
1: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: ये तो मेरा फर्ज था।
1: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
2: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
1: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
2: ये तो बड़ा नेक काम है।
1: अब ये लीजिए।
2: ये किताब, ये किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
2: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
2: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
2: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
2: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए।

0: भाई, अहिंसा की तरह तो कमाल का असर है
1: जनाब।
2: लाजवाब इंसान है वो।
1: क्या बात करता है,
2: बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जो जो मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
0: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है।

0: अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
1: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
0: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
3: मुंह है खाली, आप चले आते हो।
2: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
3: चलो बच्चे को उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
3: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम साहब।
3: चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
1: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुराने मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब, शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
4: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है, कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।

0: क्या कर डाला, ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला। क्या किया, माफी माफी रहे मेरी तवाल आ गया। क्या खूब रंग जमाक।
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया। क्या खूब रंग जमाक।
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संगदिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 101.3 MHz पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
7: आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन है। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।

0: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
1: नमस्कार विनोद भाई और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
0: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
2: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
0: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहां से शुरू होते हैं?
1: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसा गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने संभव मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: वाह वाह।
1: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
0: वाह वाह।
1: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा।
0: ये किस शहर की बात है?
1: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूँ, मेरी तो पैदाइश वहीं की।
0: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
1: जी,
0: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
2: जी, मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहां पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहां का मैं रहने वाला हूं, अब प्रयागराज हो गया है, तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
0: क्या बात है।
2: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
0: क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए।
2: तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
0: हो ये इंजीनियरिंग और गायकी
2: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
0: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
2: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ, मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, ये भी हुआ है?
2: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
0: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर
2: नहीं। जी,
0: मुख्तार भाई आपने क्या पढ़ाई की है? भाई
1: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
0: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है।
1: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर, जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा।
0: जी,
1: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
0: हाँ।
1: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
0: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं। तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
1: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना।
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है। हाँ। आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
0: जी,
1: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार

0: था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं।
0: जी जी।
1: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आप को कम गाने का मौका मिला।
0: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद।
1: क्या बात, क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है।
0: जी जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका।
1: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे इनाम लेकर पुकारो।
0: क्या बात है, वो भी डांसिंग का म्यूजिक है।
1: ये डांसिंग का म्यूजिक।
0: तो दो लाइनें हो।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल गोविंद, आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर मिलते थे, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मार्क बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सर सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके

0: कान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाए और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है, और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खासतौर पर सैड सॉन्ग से जुड़कर देखा जाता है। गोविंद आप ये मानते
2: हैं? यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का, यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिए जाए और एक सैड नंबर दिए जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
0: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश,
1: क्या तो
0: मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबा मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है,
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने, तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो तुमको

0: गे।
1: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंडीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात गानी है। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है,
2: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने,
1: वाह वाह,
2: जैसे फिल्म कभी कभी का,
1: हाँ

0: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूं तो मुझे हॉलैंड नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहां पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर में सबसे ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहां रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है
1: ये देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ,
0: ना तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन दे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता, और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूं जितना हो सके। 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ, और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं?
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ, चलो इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है?
2: थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब है, ये मुझे पता है, तो किन गजलों का?
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी,
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की भी गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: और क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनो। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।
1: हो आज मौसम बड़ा

0: जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया, अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।
1: सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब

0: पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मजा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
1: सोच के जो है
0: चुपके रात दिन
1: चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके।

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है गजलों का, जब गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते होंगे।
2: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
2: एग्जैक्टली तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या कि
2: भाई लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज ठीक से निकल जाए, आवाज चल जाए, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है। हाँ। तो वो थोड़ा सा अगर ऐसा सोचते अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मैं मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है और जैसा मुख्तार भाई ने बोला पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है।
1: हाँ।
0: जैसे धक धक धक धक करता रहता है और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा जैसे पहला गाना मेरा ही है तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना?
2: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर वाले
2: को, हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभाल।

0: बिल्कुल। एक चीज हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं
1: जी।
0: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है, ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
1: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी
0: बिल्कुल,
1: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूं, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूं कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड

0: कि मैं स्टेज पे जाता हूं, मैं कभी ऐसा सोचकर भी नहीं जाता हूं कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
1: चलता चला जाता है।
0: हाँ,
1: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
0: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी। कहते ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है,
1: अरे
0: तो खरीदने ही नहीं चाहिए।
1: गोविंद कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ, कभी कभी पड़ती है सर, मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना वो दिमाग में मेरे बैठ गया है, वो चीज कुछ लाइनों को देखना पड़ता है। मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहले दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन रहते हैं वहां पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन है इतने सालों से, तो अब वो सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा बिगर देखना पड़ा।
1: गोविंद आप बताइए।
2: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं। और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
0: जी।
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी बारीकी से,
0: बारीकी से जो सुनना
1: जी,
0: ये
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूं कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहां से जो लाइन जहां खत्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूं वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, गाया हुआ नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: जब आपकी तरफ आते हैं तमाम तरह के शोज की है तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी तो होता है। और काफी सारे फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था तो मैं खाली उससे इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है कहीं हमारी गलती होगी तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो गाने खाली ऐसे टच कर देंगे तो शुरू हो जाता है,
2: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था बस।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
0: वो तो हारमोनियम लेके,
1: लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है। मैंने काफी शोज इनके साथ किए तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: ये आज मॉडेस्टी
1: नहीं, बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा, मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना। अच्छा, आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोल।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी।

0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: ये है विविध भारती।
1: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अदनान सामी और आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

शुरुआती नगमा हम सुन रहे हैं धरती फिल्म से, लता मंगेशकर और रफी साहब के युगल स्वर में। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जय किशन का संगीत।

अगला गीत हम सुन रहे हैं पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार कैफ भोपाली, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

अगला गीत हमने लिया है श्री 420 फिल्म से, मन्ना डे और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जय किशन का संगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

शिवहरि के संगीत निर्देशन में हम सुन रहे हैं लम्हे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर व साथी कलाकार की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत हम सुन रहे हैं गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल व साथी कलाकार की आवाज में। गुलजार के बोल हैं ए आर रहमान का संगीत।

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: کا نکلا تھا. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है. नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए.
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं. गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो.
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया. श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है. श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है. राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली. सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया. बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी. दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं. राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी. इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी. उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है. फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33

0: 21वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र खुले समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामटी जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज 55।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया। बुलबुल कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट दे रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की,

0: 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।
2: कैफी आजमी की गीत रचना SD बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: गालिंग।
1: और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के। रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है चौधवी का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो दिन बहार आई गांवों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।